0: ढुक होइन ढुक्क हुँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्सकै अभिकर्ता बनाऊ।
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड। विचार तितो पनि मिठो पनि, विषय राजनीतिक पनि गैर राजनीतिक, अतिथि परिचित पनि अपरिचित पनि, र सरोकार सीधा तपाईसँग, प्रत्यक्ष पनि अप्रत्यक्ष पनि। द न्यूज प्लस, द न्यूज प्लस रेडियो थाहा संचार 99.4 सहित थाहा संचार नेटवर्क का पार्टनर स्टेशनहरूबाट एकै साथ प्रत्येक दिन बिहान 6:30 बजे निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।

0: थप जानकारीका लागि B&B डेन्टल क्लिनिक घोराई 15 हस्पिटल रोड निमा हल कुमारी बैंक अगाडि दाङ शाखा नारायणपुर बुधौरा चोक। सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 082-590-350 र मोबाइल नम्बर 98-578-43-122 र 98-578-43-123।
1: B&B डेन्टल क्लिनिक घोराही 15 दा।

0: 有了是的。
1: 小姑娘了，我的爸去说，我的爸去说，王子你哪来的啊？王子你上面来管了吧，我难看你怎么
2: मेला यू मायु का लागि त सुनसरी गाउँपालिका योमी मस्तक जरुरी सूचना जुओ बेला खेमरिदे गरम ओगोतिरी जेऊ बेला सोनो फुरी कता अचुदुरी जेऊ आउ बेला क वन जंगल ल मे लागिने मस्त ज सम्भावना ताई आउ ये गिने प्राकृतिक सम्पदा र त खेत जस खेमनादे वातावरण मिलेने ल खेपा असर केने रि उमुल र थाउने भुछे ताने वायुमण्डल ल कार्बन मस्त ज तानादे भने जलवायु परिवर्तन ल असर सकेने सोनो नाखार नामे ल मे लागिने सज जिमी गिमी लापरवाही सोनो चाउसो खेलगेमा दुख जिन्दगी को ठेल मेला की नाटे जन धनी में खेता छिपी ताऊ वो होकाई
3: ये छोटा नेला बोला मेला की ने पूरा रंग दे नौ पूरा ले चौसो खेल गिरी
2: बन जंगल सर मेरा आज मेरी बानी एमेला एमे उस छोटा नेला ली उसको पर पत्र राले पार जगे रहते ही
3: सलाई लाइटर सियाला मे सचंगे चीज राले जबांगजारो यामा देने पोला गिने या इतने चीज रह रही थी बन जंगल याद किया बाबा या
2: पिकनिक बन भोज बाको मे सचंसु छिन्नी मेले चौसो सही देगी खिनाई बन जंगल उस छामी तेगी बानी को चुरोद विधि ओरे को नहीं कुबार
3: नान्थर नाम लिजाऊ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बने होंगे ढाले च अनुगमन दुने व्यवस्था चाउस गिरिए
2: गेसो छामेला खोरे ल चाउसी पोलिए हरिदे तरिम गाई गेजो मेके लाइजु अब नजरे बनाए गेन येल गेजो मेके मालाए औले लायो के लाइए
3: वन जंगल जुडिसियो घेन बारी ल बाली नाली चिउला चिउली यात्रा सताउसु छिनी ने चाउसो सहिदे के खेले यहाँ
2: वन जंगल मेला दुगे माइए
3: ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सहज सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका कार्यालय खबर गिरिए
2: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा

0: एकमात्र डिटिएच सेवा डिस होम
1: डिश होम खुशीको कनेक्शन।
2: नमस्ते डाक्टर सर।
3: नमस्ते, बस्नुहोस् न, भन्नुहोस् त के हो?
2: हेर्नुहोस् न डाक्टर साहब, मेरो बच्चा राति राम्रोसँग निदाउन पनि सक्दैन।

0: ढोक ढोक होइन ढोक्क हुँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्सकै अभिकर्ता बनाऊ।
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड।
2: निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।